0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक।
3: इट्स 10 एएम।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय हाई फेस। बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौ, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौ।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक,
3: इट्स 1 PM।
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय हाई फेस, बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: Time check.
3: It's 8 p.m.
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.